अमृत क्षार बिखे बिख खाई, माया मो भरम पे भूले सुदारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुरु संगत तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई। असमला चौथा छंत कर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास धन गुरु रामदास धन गुरु रामदास साहिब जीओ हर

बाजार बाजारी बाजार में आकड़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले आल पतार, लटकियां के मुंदड़े लटकियां के हार, जितन पाई नानका सेतन हो मैं छार।

0: सत
1: सकुन में आपको परकुन में को इधर तारा जू तोलिए में सुगरा हो अपराधी दूणान में जो अंता मृगा शीस नवाये क्या थिए जार दे कुसुधे जाए
0: पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजुस बुगुल समादं मुखचूट बिबुखन सारंग त्रैपाल त्याल विचारंग गलमाला दिलग लिलाटंग दो दोती बस्तर कपाटंग जय जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निचो कर्मं कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु बाट ना पावे पौड़ी
2: पौड़ी कपड़ो सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना

0: नाटमेर शरीर का कृत कृतवा जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझेता सचुग्रह संतो का तर्म गिरथवाओ त्रितरा जते का जोर गिरथवाओ द्वापर तपे का सत गिरथवाओ कलयुग रत गण का कूड़ गिरथवाओ महला पहला
1: शाम कैसे तंबर स्वामी सच में अच्छे।

0: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पारा वारिया
1: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत देव सबे

तेरी क्या करेगा, तेरी रहमत तेरी, तेरी बख्शिश सिख जाए तेरा मन है, तेरा गुरु भी तेरा लिखी गुरु भी है, मेरा गुरु जो कुछ है तो तेरा करे लिखा।

तो दशमेश पिता जी फरमाते ने कि जदों मैनु हुक्म होया उस अकाल पुरख दा इन प्रभ जब आइस मोह दिया तब हम जन्म कलू बेलिया।

0: चित न भयो हमरो राम नित जिबी रही सरत चरणन में। मैं अपना सुत तो है निवाजा,
1: अपना सुत तो है निवाजा,
0: अंक पर जुड़ कर मैं पहुंचा जा जहां कहां

0: हमारा
1: दस बीस पचास पर मोदी
0: कहां बुद्ध प्रभ तुझ हमारी बरन सके मेहमान जो तिहारी तुम्हारी मेहमान अपने पारा
2: तुम्हारी मेहमान अपने पारा
0: हम न सकते।

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा, मन लोकां पास फरोलदा। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। ते अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। ओ वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच ओ दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

मेरे प्यारे, ओ माय बिलव्ड माइंड, कम होम एंड मीट द गुरु. सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द गुरु, एंड गुरु सेज इन दिस लाइन, कर वसै हरे, ही रिजाइड्स इन योर ओन होम. So Guru is indicating towards our body, that Guru resides in our body. So he is asking the mind to come back and let's meet the Guru, which is in your own home.

प्यारे माई बिलवड, ओ माई बिलवड माइंड, रंग रलिया मानो, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज ओ माई माइंड द रियल फन इज इनसाइड, सो कम बैक।

प्यारे, ओ माय बिलव्ड माइंड, नानक सेस, गुरु नानक तुठा, गुरु हैज बिकम मर्सीफुल अपॉन यू।

मांगो राम ते एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माय डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माय हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माय माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

0: और सत्संग जीओ। जो बच्ची का जन्म दिन है, बच्ची अविनाश कौर, गुरु उस उम्र दराज करे, विद्या दान बख्शे।
1: जिथे धन गुरु अर्जन देव पातशाह दा सुंदर स्वरूप अखां के आउंदा है, उथे कलगीधर पातशाह जी दी याद भी आ जांदी है। उच्चारण करो श्री भाई
2: श्री
1: इस लई आओ सारे प्यार नाल जो साहब सानू सुमति बख्श रहे हन कि मनुष्या जन्म प्राप्त होया, ते कदम किसे माड़े पासे ना चले जाओ, क्योंकि माड़े पासे कदम जा रहे हन तां नरकां वल ले जा रहे, ते जे आ सत संगत वल कदम ले आए हन तां साहब कहंदे हन ओ कदम सफल हन। ओ मुख तनता दे योग है जिस मुख तो उचारण कीता सतनाम, ते जिस रसना तो नाम नहीं उचारण होया साहब कहंदे हन रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटी, जिस रसना तो नाम नहीं उचरिया उस रसना नू तिल तिल करके कट क्यों नहीं दिता जा, बल्कि साहब ए भी बख्शिश करते हैं कि नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जा, जिस हिरदे विच प्यारे दी सिक नहीं है, तुहाडे अंदर सिक है ताइयो गुरु चरणां विच जुड़े बैठे हो, ताइयो दूरों नेड़ियों आके धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच बैठे हो, ए हिरदे विच सिक है, जे सिक ना होवे तां कोई भी कम सिरे नहीं चढ़ सकदा। उचारण करो श्री वाहे
2: श्री वाहे।
1: वस्तु ओही प्राप्त होंदी है जिस विच मन लाया जावे, सिक होवे साई वस्त प्राप्त होई जित सेती मन लाए, ते जदों मन गुरु चरणा नाल जोड़ के तू एक भी कदम बार रखदा है, गुरु करोड़ा कदम तैनू अगो लैण लई आउंदा है। तू एक बारी सिमरदा है गुरु तैनू बारंबार सिमर रहा है। उचारण करो श्री वाहे
2: श्री वाहे।
1: आओ इन्हां दुखां नू सारे प्यार नाल मिल के पढ़ी, फिर कीर्तन समाप्ति है, फुलां चुकां बख्शनियां, सवेर दा कीर्तन 7:30 बजे तो 8:30 बजे तक नानक पे आओ होवेगा। आप जी दे चरणां विच बह के हाजरी भरांगा, जो गुरमुख पहुंच सकते हो गुरु दीयां खुशियां प्राप्त कर। आओ सारे प्यार नाल इन्हां तुकां नूं पढ़िए, चरण चलो मार्ग गोबिंद, ते फिर की होवेगा मिटे पाप जपिए हर।

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां या बुरियां।

पर आई है। प्राय स्त्रीवन लुक अंदर ठाणी, याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान। भाई जोगा सिंह दे कन्ने च आवाज पई, भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे सी हेठा कर लिया, पिछे मुड़ मैनू ता कोई वेख नहीं। प्यारी सास संगत अद्धी रात, भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फिर हुण कोई नहीं वेख, पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखे फिर कन्ना च आवाज आई केड़ी।

जोगा से में पहुंचे हजूर ने दूरू तक देखे प्यारी सास संगत जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता वो भाई जोगा सिंह आ गया आ जा जोगिया साढ़े कोल आ जा भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंच जोगा सिंह भाई आखा जी आया सोना सिख तू है सरदार बीबा घर मार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा भाई जोगा सिंह सोच मन मैं ता समझिया सी गुरु अंतर जामी जे अंतर जामी होंदा ता हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा जे हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा होंदा ता मेनू सजा दे पर गुरु तो मेनू प्यार प्या कर जे गुरु अंतर जामी नहीं जे गुरु इथो दिया नहीं जानता तो मेरी दरगाह कि फड़ेगा 12 साल एवं गुरु की सेवा की आखो श्री अंतर जामी सतगुरु सोचन लग सिख नू काम दे कुंड विचो कढ़िया है हुण अशरदक दे खाते पिया पैंदा गुरु नू पता है शरदा तू हीर पिया होंगे हजूर ने कहा जोगिया मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने तकिया इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजर नीवियां हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं देंदा तकदा फिर खंदा तीजी वेरी जिसले साहबा ने किया जोगिया मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने जिसले कलगीधर पातशाह वल तकिया भाई जोगा सिंह हैरान हो गया कंबन लग गया की तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहन वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देन वाला इको ही है दोवे हथ रो पिया भाई जोगा सिंह अच्छा मैं पापी हां मेनू बख्श पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया जे संगत च बोलना था हजूर कहन लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बढ़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप ते तू कहना गुरु नू पता है नहीं तो भाई जोगा सिंह कहन लगा महाराज ए भी चंगा होया आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर कलगीधर पातशाह जी कहन लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है मेरी अजमाइश की थी है भाई जोगा सिंह चुप कर गया ते माद गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा सुनाया पर मैं इम्तिहान च पूरा अजमायश च पूरा पहले जामे विच सिख ने अजमाया बाबर दी जेल च अरदास की थी मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै तो जो गया मैं संगता दा हुक्म सिर मथे रखे जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू ने घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मर के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बंदी रेत पाई पर मैं अजमाइश ही पूरा बिधी चंद ने मेनू अजमाया छेवे जाने दुशाले लैके भजा जाता है पिछे बादशाह की फौज आ बिधी चंद ने छेवे पातशाह का ध्यान करके पठियारी दे बलदे पठ भी छाल मार हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघा ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो अधूर कहन लगे जो गया फिर बिनी चंद नू तत्ती वारी लगन दिती
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ

0: बादशाह मेनु बख्श। मैं भूल गया, हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नु पता ही कोई भूल गया। रो रो के भाई जोगा सिख दा मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए ता जा तेरू बख्शिया। आखो श्री बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी प्यार नाल पढ़ो।

0: इतिहास लिखे प्यारी सास संगत भाई गंगा सिंह ने दो नामा नहीं आते दो नहीं.
1: You are listening to SeekNet PO, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

महबूबे बीमा तक है कि सन्माने डिमांड निकाने रकान संत श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी देकर बड़ी उम्मीद के दिलाब में बैठी गुरु साहब सिंह जी आपकी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के बीचों आप जी ने सुखा कटिया जलों आप जी ने सोच लिया कर आप उत्तर बाद में जाना है एक गल नाल घट आयद हो गई सब कुछ दूर पैंड आगे हो गई थे पैसा जी ने आप जी बड़े सुंदर अंदाज के नाल कुछ संगीत दिया गल की सच संजो विद्वान लोग बैठे धन धन जी रणजीत सिंह साहब जी दशिया साहब जी कान जी मेरे अजीत अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच सिंह जी जो संगीत है गाँव का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्ना की गल पै गई है कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजबूत ना बनता गल है आत्म गल है मेहनत जिन की सुपार है जिड़ा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजमून नहीं जिन्हें करना है उन साधन की होगी नहीं मिलनी पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है यह तो आड़ है सच जी पैसा भी कहा तो हाली बता बिल्कुल नहीं मिलता तुम इसे तंत्र गलत बीच है मैं दो गल कह के सात संगीत दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाना पेंटिंग पेंटिंग का जरूर बन गया गाने का कुछ स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आदि का स्वरूप है ना परमेश्वर यह पहले जवाब है जब जो सब समझ आए कीर्तन की है तो फिर सात संगी आबादी की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे लास्ट 25 मिनट टाइम है काश तकरीबन 20-22 मिनट समाप्ति करेंगे शब्द की टीक है आपे खुद चेला है आपे आपे हर प्रब चोट बनानी राग तकलीफ है शर्म करांगे दावे नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफ है आओ आपकी छोटे तक बात मैं पूछ रहे मतलब तो नतीजे वाहे

0: कबीर साहब सत्संग जी हो, दुनिया विच बड़े बड़े खुशी दे मौके हैं और तरह तरह नाल दुनिया अपने मन की खुशी जाहिर करती है। इस दुनिया विच जेड़े भगत लोग हैं, जेड़े रब दे बन जाते हैं, जेड़े परमात्मा दे चरण अपने मन विच वसा लैंदे हन, जिन्हां नूं अपना सच्चा पति रब लगन लग पैंदा है, एका पिर सखियां सब पिर की, खसम ते ओ आप है असी ते सब दासियां हां। कबीर साहब कह रहे हन, मैं किहो जिहा दूल्हा मैनू पाया, मैनू रब वर्गा दूल्हा मिलिया है। राम राय सो दूलो पायो अस वड भाग हमारा। बराती मेरे नाल कौन हन, मेरे पंजो तत। रब ने मेरे ते कृपा कीती है, मेरे मन रूपी सेजा ते आके चरण पाए हन, मेरे ग्रह आए राजा राम पथारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस तेती करोड़ देवता इस गल दा साक्षी है। की साक्षी है, कह कबीर मोए ब्याह चले हैं। पुरख एक भगवान, पुरख एक है, पुरख ओ वाहिगुरु आप है, असी ते सब उस दियां दासियां हां। तू ठाकरो बैरागरो मैं जे ही कण चेरी, मेरे वर्गियां लखां दासियां करोड़ां दासियां तेरे दरवाजे ते चाड़ू पईयां दिंदियां हन। मैं जे ही घन चेरी राम तू सागरो रत नागरो, हौ सार ना जाना तेरी राम, सार ना जाना तू वडदाना कर महरमत साई, कृपा कीजे सा मत दीजे आठ पहर तुद त्याई। ऐसी मेनू मत दवो, ऐसी मेरे ते कृपा करो कि मैं आप जिनू अठो पहर हर घड़ी तुहानू जपा वाहिगुरु। ते जिन्हां ने वाहिगुरु नू जपया उन्हां दी जिंदगी दा नाम ही सुख बन जांदा है, ते जेड़े रब तो बिना हन ओह दुखी हन, ते जेड़े रब वाले हन जेड़ियां खसम वालियां हन ओह सुखी हन। ते गुरु कृपा करे ए सुहाग ते जपण वालियां दा बनिया रवे। कह कबीर मोए ब्याहे चले हैं, आओ बड़े प्यार ना कहिए।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.